0: कॉन्फ्रेंस से छू रही थी।
1: Through Ohio, negative 78. Okay, no further. Okay.